0: Ali is one of those children who, with your assistance, has the honour of being a Hafiz. And that too from only £29 per month. Help UKIM by sponsoring a Hafiz and get rewarded by up to 70 times blessings. For donations, call now or visit ukim.org.
1: रिश्ता नेटवर्किंग आज के इस मसरूफ और गहमा गहमी के दौर में रिश्ता ढूंढना किसी मुहिम से कम नहीं। ये एक मुश्किल काम है, लेकिन घबराइए नहीं। इंस्पायर एफएम रिश्ता नेटवर्किंग के साथ मिलकर कम्युनिटी के इस मसले में आपकी मदद के लिए अपनी खिदमात पेश कर रहा है। 11th of July बरोज हफ्ता दिन सुबह 11:30 से सहपहर 4:30 बजे तक क्रिजन हॉल बरी पार्क में सिर्फ खवातीन की निशस्तों का एहतमाम किया गया है, जिसमें आप अपने अजीज और अकारब के लिए रिश्ता ढूंढ सकेंगे। हमारे पास महदूद निशस्तें बाकी हैं, आज ही रजिस्ट्रेशन करवाइए और इस कार्य खैर में हिस्सा लीजिए। मजीद मालूमात के लिए विजिट कीजिए rishta-networking.co.uk। अपने जीवन साथी की तलाश, रिश्ता नेटवर्किंग और इंस्पायर एफएम के साथ।
2: इत्तेदाल, हुरियत और हक की आवाज़ हमेशा गालिब रही है और यही आवाज़ हमेशा गालिब रहेगी। आइए और सुनिए हक की आवाज़। मैं हूं इमाम हाफिज इजाज़ मंद, सुनाऊंगा आपको प्रोग्राम आवाज़ हक में हक की आवाज़, हर सोमवार 11 बजे से 12 बजे तक, ओनली ऑन इंस्पायर एफएम 105.1।
3: From the studios of Inspire FM, the time is now 3:00.
4: Assalamu alaikum. You're listening to Inspire FM. We're now going to play for you the Arabic recitation of the Quran by Qari Abdul Basit of Egypt with Urdu translation.
5: A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim.
6: शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है।

0: مكره إليهم الخمور والزنا والفواحش ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين.
1: आजकल लोग सड़कों पर चलते फिरते चोरी के मोबाइल फोन, लैपटॉप, कैमरा और इस तरह की मुख्तलिफ चीजें फरोख्त करते हैं। चोरी की चीजें खरीदने का मतलब आप इस चोरी में शामिल हैं। इसलिए चलते फिरते लोगों से चीजें हरगिज ना खरीदें, बल्कि ऐसे अफराद के बारे में पुलिस को आगाह करें। इंस्पायर एफएम कम्युनिटी अवेयरनेस मैसेज।

0: वो अल्लाह ही तो है जिसने तुम्हारे लिए रात बनाई ताकि तुम उसमें सुकून हासिल करो और दिन को रोशन किया। हकीकत यह है कि अल्लाह लोगों पर बड़ा फजल फरमाने वाला है, मगर अक्सर लोग शुक्र अदा नहीं करते।
1: यह आयत दो अहम मजामीन पर मुश्तमिल है। अव्वलन, इसमें रात और दिन को दलील तौहीद के तौर पर पेश किया गया है, क्योंकि उनका बाकायदगी के साथ आना ये माने रखता है कि जमीन और सूरज पर एक ही खुदा हुकूमत कर रहा है और उनके उलट फेर का इंसान और दूसरी मखलूकात अर्जी के लिए नाफे होना इस बात की सरी दलील है कि वही एक खुदा इन सब अशिया का खालिक भी है और उसने ये निज़ाम कमाल दर्जे हिकमत के साथ इस तरह बनाया है कि वो इसकी पैदा करदा मखलूकात के लिए नाफे हो। सानियन, इसमें खुदा के मुनकर और खुदा के साथ शिर्क करने वाले इंसानों को ये एहसास दिलाया गया है कि खुदा ने रात और दिन की शक्ल में ये कितनी बड़ी नेमत उनको अता की है और वो कितने सख्त नाशुक्रे हैं कि उसकी इस नेमत से फायदा उठाते हुए शब रोज उससे गद्दारी बेवफाई किए चले जाते हैं।

0: उन्हें खेती बाड़ी के काम में इस्तेमाल करता है, उनका दूध निकालकर उसे पीता भी है और उससे दही, लस्सी, मक्खन, घी, खोया, पनीर और तरह तरह की मिठाइयाँ बनाता है। उनका गोश्त खाता है, उनकी चर्बी इस्तेमाल करता है, उनके ऊन और बाल और खाल और आंतें और हड्डी और खून और गोबर हर चीज़ उसके काम आती है। क्या ये इस बात का खुला हुआ सबूत नहीं है कि इंसान के खालिक ने ज़मीन पर उसको पैदा करने से भी पहले उसकी इन बेशुमार ज़रूरियात को सामने रख कर ये जानवर इस ख़ास नक्शे पर पैदा कर दिए थे ताकि वो उनसे फ़ायदा उठाए। फिर ज़मीन का 3/4 हिस्सा पानी से लबरेज है और सिर्फ 1/4 खुश्की पर मुश्तमिल है। खुश्क हिस्सों के भी बहुत से छोटे और बड़े रकबे ऐसे हैं जिनके दरमियान पानी हायल है। कुर्रे ज़मीन के इन खुश्क इलाकों पर इंसानी आबादियों का फैलना और फिर उनके दरमियान सफ़र व तजारत के ताल्लुकात का कायम होना, इसके बगैर मुमकिन न था कि पानी और समंदरों और हवाओं को ऐसे कवानीन का पाबंद बनाया जाता जिनकी बदौलत जहाजरानी की जा सकती और ज़मीन पर वो सरो सामान पैदा किया जाता जिसे इस्तेमाल करके इंसान जहाज साजी पर कादिर होता। क्या ये इस बात की सरी अलामत नहीं है कि एक ही कादिर मुतलक रब रहीम व हकीम है जिसने इंसान और ज़मीन और पानी और समंदरों और हवाओं और उन तमाम चीज़ों को जो ज़मीन पर हैं अपने ख़ास मनसूबे के मुताबिक बनाया है। बल्कि अगर इंसान सिर्फ जहाजरानी ही के नुक्ते नज़र से देखे तो इसमें तारों के मवाक़े और सैयारों की बाकायदा गर्दिश से जो मदद मिलती है वो इस बात की शहादत देती है कि ज़मीन ही नहीं आसमानों का खालिक भी वही एक रब करीम है। इसके बाद इस बात पर भी गौर कीजिए कि जिस खुदा हकीम ने अपनी इतनी बेशुमार चीज़ें इंसान के तसर्रुफ में दी हैं और उसके मफाद के लिए ये कुछ सरो सामान फराहम किया है, क्या बसलामती होश हवास आप उसके मुतालिक ये गुमान कर सकते हैं कि वो माज़ल्लाह ऐसा आँख का अंधा और गांठ का पूरा होगा कि वो इंसान को ये सब कुछ देकर कभी उससे हिसाब न लेगा।
1: आप सुन रहे थे इंस्पायर FM 105.1 की नशियात में तफहीमुल कुरान का एक हिस्सा। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, चलते हैं इंस्पायर FM की रोजमर्रा की बकिया नशियात।
2: दिस प्रोग्राम विल कंटिन्यू आफ्टर द ब्रेक। कंटिन्यू लिसनिंग टू इंस्पायर FM। इंस्पायर FM। इंस्पायर 105.1 FM।
3: Need a ride? Village Taxis have you covered. Going to the airport, station, work, hospital or school? Call Village Taxis on Luton 24 24 24 for a quick, reliable service. New drivers wanted. Get registered today and join the Village Taxis team. Serving Luton, Central Beds, TfL, Wolverhampton, Hertfordshire and beyond. Taxi rental also available. Download our easy-to-use Village Taxis app or call 01582 24 24 24 to book your right today. Village Taxis, your local taxi company.
4: When your future depends on the right legal team, choose M&K Solicitors, trusted by families across the UK. With over 20 years experience, they're one of Luton's most respected law firms, known for strong results and outstanding client care. From immigration and family law to property, personal injury and clinical negligence, their expert team is here to help. M&K Solicitors offer free consultation by appointment or visit the Friday free advice surgery from 2:30 to 5 p.m. Call 01582 732 503.
5: Rishta Networking. Aaj ke is masroof aur gehma gehmi ke daur mein rishta dhoondna kisi muhim se kam nahi. Ye ek mushkil kaam hai, lekin ghabraiye nahi. Inspire FM Rishta Networking ke saath milkar community ke is masle mein aapki madad ke liye apni khidmat पेश कर रहा है। 11th of July बरोज हफ्ता दिन सुबह 11:30 से सहपहर 4:30 बजे तक क्रिजन होल बरी पार्क में सिर्फ खवातीन की नशिस्तों का एहतमाम किया गया है जिसमें आप अपने अजीज व अकारब के लिए रिश्ता ढूंढ सकेंगे। हमारे पास महदूद नशिस्तें बाकी हैं, आज ही रजिस्ट्रेशन करवाइए और इस कार्य खैर में हिस्सा लीजिए। मजीद मालूमात के लिए विजिट कीजिए rishta-networking.co.uk। अपने जीवन साथी की तलाश, रिश्ता नेटवर्किंग और इंस्पायर FM के साथ।
6: Are you looking for a prompt let and comprehensive property management by property professionals? If so, relax and let a safe, registered agent take care of all your property matters. Marigold Residentials believe in 100% customer satisfaction and aim to provide quality service at very competitive prices. Why not also let us take care of your property sale? We're now a proud member of the National Association of Estate Agents. We also advertise in local papers free of charge. Visit us at 251 Dunstable Road or call us
7: us on 617-617. Terms and conditions apply.
8: While the world watches the crisis in Gaza unfold on the news, MATW is there, on the ground, right now, actively operating inside Gaza, delivering critical aid directly to those who need it. Medical supplies, food, clean water, and emergency shelter, when it matters. Your donation can save lives, right now, on the ground. Text MATW to 70470 to donate £10, or visit matwproject.org.uk, because when it matters most, we're there.
9: You could have the best product in the world, one that everybody wants or needs.
10: You could offer a quality service that really is second to none.
11: Or you could have offers that are simply unbeatable.
9: But it's all pointless if your potential customers don't know who you are.
12: That's those same potential customers who are also listening to Inspire FM right now.
13: Has it clicked yet?
12: To find out about an effective, ear-catching and low-cost advertising campaign, just click on inspirefm.org, then more, and advertise.
14: From the studios of Inspire FM, the time is now 9:30.
15: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Tafheemul Quran. Sayyid Abul Ala Maududi. اس میں تلاوت عبد الرحمن الخزیفی کی ہے. ترجمہ اور سورتوں کا تعارف عظیم سرور کی آواز میں ہے. تفسیری حواشی سید صفیر حسن سبزواری، پروفیسر عبد القدیر سلیم اور جناب اشفاق حسین کی آواز میں ہیں. اس کام میں جن افراد نے بھی حصہ لیا ہے ان کے لیے دعائے خیر کی درخواست ہے.
16: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
15: پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے.
16: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
15: اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے.

0: है और उसको लेकर आए और उसमें फ़ायदा दिखाए किसी दूसरे इंसान को, और कभी कंपेटिटिव ना हो और कभी दिमाग पे काम करना है। कल मैं किसी को कोई बात समझा रहा था कि देखें, अक्सर वो कहते हैं सर आप जज्बात के बड़े ख़िलाफ़ हैं, तो मैंने कहता हूँ मैं बिल्कुल जज्बात के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। जज्बात ही रोबोट को इंसान बनाते हैं, जज्बात ही इंसान को मोमिन बनाते हैं, ईमान वाला बनाते हैं। जज्बात जिसका ताल्लुक हमारे दिल और दिमाग दोनों से, वही इंसान से कनेक्ट करके वही रूह के अंदर का जो स्पार्क है उसको सप्लीमेंट करते हैं, ऑगमेंट करते हैं, उसी से रिजल्ट हासिल किए जाते हैं। लेकिन जज्बात बिरयानी में नमक की तरह है, खूबसूरत कर देंगे, अच्छे से अच्छी इंग्रेडिएंट्स डाल देंगे, परफेक्ट वो लग रही है, खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है, एरोमेटिक है, सब कुछ है, लेकिन खा नहीं पाएंगे आपके, नमक नहीं है उसके अंदर। और कई लोग जब इस नमक को बहुत ज़्यादा कर लेते हैं तो इसमें दोबारा इसको कम नहीं किया जा सकता, वो खाने के काबिल नहीं रहती। तो अगर कम होगा तो थोड़ा सा डाल देंगे तो काम हो जाएगा आपका। तो जज्बात के बगैर ज़िंदगी का मज़ा नहीं है। उस बादशाह के बेटे ने बिल्कुल यही कहा था कि मैं आपसे उतनी मोहब्बत करता हूँ जितनी मैं नमक से करता हूँ। बादशाह को बात बहुत बुरी लगी, बाकी कह रहे थे जैसे मैं हीरो जवाहरात से करता हूँ, पावर से करता हूँ, रब से करता हूँ, हर एक चीज़ से मिलाया गया, लेकिन नमक से नहीं। तो बिल्कुल बाद में पता चला कि वो नमक बड़ा इम्पॉर्टेंट था। तो इसी तरह चीज़ों को समझना और छोटे छोटे स्टेप्स लेके उनकी तरफ बढ़ना वो बहुत ज़रूरी है। तो जज्बात, मोहब्बत, इमोशन, इमोशन कहते हैं जज्बात को। जज्बात वर्ड कहाँ से बना है? जज्बा, जज्बा है तो आपके अंदर यू फील अलाइव, तो उसी से जज्बात बने। तो इमोशन क्या है? मोहब्बत। इमोशन क्या है? किसी की इज्जत करना, किसी का मुकाम किसी को जहन में देना। ये फीलिंग्स जो हैं हमारी वो एहसासात हैं, वो जज्बात नहीं हैं। इसीलिए डिफरेंट वर्ड्स बनाए गए हैं लोगों को इन चीज़ों को एक्सप्रेस करके समझ सकें। एक थॉट आपके जहन में पैदा होती है। अब आप किसी इंसान से मोहब्बत करते हैं, ये आपका उसके लिए जज्बा है, इमोशंस है। लेकिन उसके बाद जिस चीज़ के मैं खिलाफ हूँ वो ये है कि जब आपसे बंदे से मोहब्बत हो गई, बंदी से हो गई, रिश्ता बन गया, काम से मोहब्बत होगी, पैशन से मोहब्बत होगी, अब जज्बात आपने इस्तेमाल कर लिए हैं, अब आपका दिमाग इस्तेमाल करने का वक्त आ गया है कि इस जज्बे को लंबे अरसे तक कैसे रखना है, इस रिश्ते को कैसे बना कर रखना है, इसमें से कैसे इसकी खूबसूरतियाँ आपके अंदर ट्रांसलेट होंगी, इसको कन्फर्म करना है। और वो जब भी कोई वीक थॉट या नीच थॉट आपके जहन में आती है उस पर अमल नहीं करना है। वो एक थॉट है आपके जहन में जो आई है, बैकग्राउंड की वजह से आई है, पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से आई है, चाह की वजह से आई है, चाहे जाने की वजह से आई है, इसके बदले किसी चीज़ के आप लेना चाहते हैं उसकी वजह से आई है, वो उठानी नहीं है, उसको फीलिंग नहीं बना, उसको फीलिंग नहीं बनाना है, वो मेयर थॉट है। अपने जज्बे से आपने जुड़े रहना है और आप देखेंगे थोड़े से वक्त के बाद आपको वो चीज़ें समझ आने लगेंगी। जो जल्दी में कोई आपने जज्बाती होकर कोई ऐसा स्टेप नहीं ले लेना कि बनी बनाई मोहब्बत, बना बनाया दोस्त, बना बनाया काम बिगड़ जाए। हमारे लोग अपने रिश्ते हॉर्मोन्स की वजह से बर्बाद कर देते हैं, अपनी पुअर इम्पल्स कंट्रोल की वजह से बर्बाद कर देते हैं, एकदम बोल पड़ने की वजह से बर्दाश्त कर सकते हैं, चुप रह के देख लें थोड़ी देर। साइंस आपको बताती है कोई भी इम्पल्स, कोई भी यूफोरिक कॉल जिस पे आप गिव इन करते हैं वो 15 से 20 सेकंड सिर्फ दबानी और बर्दाश्त करनी होती है, उसके बाद चीज़ें आपके इख्तियार में भी आ जाएंगी, आपको समझ लग जाती है कि ये कितनी स्टूपिड थॉट है और मैंने कितनी गलत बात की और मुझे कितना अफसोस हुआ, अगले बंदे को कितना अफसोस होगा और मुझे वो मुकाम कैसे मिले जो मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो ये वो वीक थॉट्स को फीलिंग, एहसास बना लेना और अपने जज्बे को या जज्बात को ख़राब कर लेना, इसके ख़िलाफ़ हूँ मैं। जज्बात के कोई ख़िलाफ़ नहीं हो सकता, वो इंसान को इंसान बनाते हैं, उसी के दिल में वलवला पैदा करते हैं, उसी से रब कहता है मैं दिल बदल देता हूँ। उसने कहा मैं दिमाग बदल देता हूँ। बाद में पता चला कि ना वहाँ पर भी आपको मिल जाते हैं न्यूरॉन्स तकरीबन 40,000, तो वो भी उसमें भी थॉट्स और उसमें भी फीलिंग्स हैं। तो इस तरह और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इसको जब आप ऐसे सोचेंगे तो चीज़ें बहुत बेहतर होंगी।
1: और यहाँ आज के हमारे इस प्रोग्राम का अख्तिताम होता है जी. दिस इज आजाद साइनिंग ऑफ. यू कैन ऑल्सो लिसन टू आवर रेडियो स्टेशन एट www.radioazad.us. इसके अलावा अगर आप पोएम्स सुनना चाहते हैं, नज़में सुनना चाहते हैं, तो आप साउंड क्लाउड पे जा सकते हैं, मिक्स क्लाउड पे. स्पेशली बताना ज़रूरी है उन तमाम लोगों को जो शोज़ की रिकॉर्डिंग या अपने फेवरेट शोज़ की रिकॉर्डिंग सुनना चाहते हैं अपने टाइम के ऊपर. आप लोग मिक्स क्लाउड पे जाके रेडियो आज़ाद को सर्च